जुजलपाथौ नेपाल सम्बत छिन्छ सपी खुदा हियन लागा सप्तमी थो रेडियो नेपाल ख अन्य नादिसौ चिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। नवलपरासी व्रतघाट सुस्थ पूर्व या विनय त्रिवेणी गाउँपालिका दुई एस मोड लिक पूर्व पश्चिम राजमार्ग यात्रुबाग बस झाँका जुया खुमा मुनि सिगुदुसा झिमा मनु खापा सुगुदु सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक नापा सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापा या कथ नेपाल गाउँसँग वया सोङ्गु प्रदेश 301006 15 53 ल्याया बस चालक नियन्त्रण तङ्कु बोले सदक्ष नाला कुटौना झाँका जुवङ्गु ख बसे चोनाओपी झिन्च्यामा मनु मध्ये झाँका सखुमा मनु सिगु दुसा झिमा मनु खापा जुगु व निमा मनु सुथन लागु जानकारी हो गुदु झाँका स सिपी मध्ये जाजरकोट्या फेरी गङ्गा नगरपालिका तिन या निदोदुमा निर्जुङ खत्रिया मसिका जुगु व यामासिया मसिका दशा जुइता ल्यौदनी खापा जुपिनीगु मध्य बिन्दु प्रादेशिक अस्पताल दण्ड्यावास जुया सङ्गु दुसा झाँका विशेष अझ उप अनुसन्धान जुया सङ्गु जिल्ला प्रहरी कार्यालय जानकारी बिगुदु। संघीय संसदीय निगु सदन्य न्याना सङ्घु अधिवेशन वङ्गु चाने निसिङ कोचागुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नेपाल संविधान कथा मन्त्री परिषद थ्वे असोस्तेर गति सिफारिस जुगु व वङ्गु चाने चिन्हिता इलनिसे संघीय संसदीय निगु सदनया न्यानासङ्घु अधिवेशन हङ्कागु राष्ट्रपति कार्यालय प्रवक्ता कृष्ण बहादुर साही जानकारी व्यादिगु ख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नापा सभामुख डोल प्रसाद अर्यालम हिग नाप्ला नदिगुदु राष्ट्रपति भवने जुग नाप्ला ज्या सभामुख अर्याल अन्तर व्यवस्थापिका सङ आइपियु या झिङ सचिव नेसोकगु महासभा बोटी क्याता थौ झाता सनागु जानकारी याका दिगु ख नाप्ला ज्याचो स आइपियु महासभा स नेपाल या बोटी व प्रतिनिधित्व या विशेष नापा सल जुगु सभामुख या सचिवालय जानकारी बिगुदु प्रतिनिधि सभा या वङ्गु चाने कोचागु अधिवेशन खुई निनु खुई च्यागु बैठक चना निसवन हेन हे गौ सुइगु मिनेट संसदीय कारवाही स यी व्यतीत आगुदु अधिवेशन अध्यादेश यता विस्थापन यायगु विधेयक नापा झिन्गु विधेयक पारित जुगुदु वङ्गु वैशाख 28 गते निसे मिगतक मुख सचिव पी ज्ञानु दुसान संसदीय कार्य दिन खुइ निनु काम यागुदु सभामुख डोल प्रसाद अर्याल निकगु अधिवेशन या अन्त्य जुगु घोषणा या न्ह अधिवेशन जुगु जुसान ज्याया विशेषण थासा जानकारी व्यादिगु ख प्रतिनिधि सभा या न्यानासङ्घु अधिवेशन या मिग लिपाङ्गु बैठकसँग थिथि नेहेगु विधेयक स्वापुदुगु समिति सन्तफावार सहलाई नीति छेमा धैगु प्रस्ताव पारिचुगुदु बैठकीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतम छु नेपाल एन्या व्यवस्था माकिगु विधेयक 2083 हो राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2083 यथा दफावार सहलाई नीति स्वापुदुगु समिति छेमा धैगु प्रस्ताव न्यभया दिल पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालाम फोहोर मैला व्यवस्थापन विधेयक 2083 या त दफावार सहलय नीति स्वपुदुगु समिति छुएमा थिएको प्रस्ताव पारित हेर्न दिगु ख अध्ययन महिला बाली बालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादी मिसा मस्तेगु लैङ्गिकको यौनिक अल्पसंख्यकको सामाजिक सुरक्षा नापाया छु नेपाल एन संशोधन यायगु विधेयक 2083 दफावार सहलय नीति स्वपुदुगु समिति छुएमा थिएको प्रस्ताव याना दिल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता माया दुरु या त स्थापन याइगु जोल मिगु इनेगु नियन्त्रण नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य संस्था या सुरक्षा नापाया निकगु संशोधन विधेयक 2083 व राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक 2083 यता दफावार सहलय नीति स्वपुदुगु समिति छुएमा दैगु प्रस्ताव न्यभया दिल बैठकीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या थासँग कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गौतम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग या च्याकगु दक्ष प्रतिवेदन 2083 दुत बिगुदु सभा सन्वे मफुगु मौखिक व चोगु नेस्यालिस स्वापुदुगु मन्त्री बैठके टेबुल याना दिगुदु प्रतिनिधि सभा बैठके विशेष ई फना परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्र संघ चे छकगु महासभा बोटी कायागु झोले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्व दुगु पुचसन थिथि चेगु ज्याजो नापा निगु
दे या बहुपक्षीय उच्चस्तरीय नाप्ला ज्या चुगु सदन या त जानकारी भ्यादिल अथिना प्रतिनिधि सभा हिगा बैठक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रासोपाय महामन्त्री विपिन आचार्य मनुतेगु परिवर्तन या उच्च आकांक्षा हो राज्य संयन्त्र या सुस्थ कार्यशैली दतिया गा नङ्केता

यता ध्यान बिगु व नुगु कानुनी व्यवस्थापन हवाई भाडा उप म उपकिगु थ्वाथ्विका दिल सहलसँग संसद त्यसँग विदेशी हो नेपामी यात्रु त्यसँग कायदैगु क्षतिपूर्ति एक रूप तातोके यागु इले उडान जुई मफुगु अवस्थाके यात्रु त थ्याङ्किगु यात्रु दथु थेनेगु हाठ्या नापा मा कथया राहतु क्षतिपूर्ति बिमागु व्यवस्था उडान तालिका पिथने मागु व उकिया त छाक स्वे मागु बिचा पोङ्का दिगु खस अथे या नाम हिगया राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा संसद नापालित वोगु राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पलिस्था औ सञ्चालन विधेयक 2081 विशेष प्रतिनिधि सभासँग वोगु संशोधन या त सहमति यामा दिगु प्रस्ताव न पारिजुगु दु अध्ययन बैठके महालेखा परीक्षक सोकागु दक्षीय प्रतिवेदन 2083 निर्वाचन आयोग नेपाल या दक्षीय आर्थिक दन 2081-82 दक्षीय प्रतिवेदन व मुस्लिम आयोग नेपाल या आर्थिक दन 2081-82 दक्षीय प्रतिवेदन दुत बिगुदु जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर व बैतडी हिग ब्याग्ला ब्याग्ला सोचौँ पिथासे निनुया निनुयङ्क महाकाली खुसी तटीय लागा जलाखला या त सतर्कता क घा त इनाफियागु दु भारत या दार्चुल्या दुगु धौली गङ्गा जलविद्युत परियोजना थौँ शनिबार निसे सोमबार तक सिल सफाई या ज्या जुइगु थो ज्याया नीति बाँध्या खापा च्याकी गुली महाकाली खुसी या जल स्तर उपगु सम्भावना दुगुली तटीय लागा जलखला पिन्ता सतर्कता कगाता इनाप यानागु सपुदुगु जिल्ला प्रशासन कार्यालय पिथङ्गु सूचना सन्यथना तगुदु विश्व बैङ्क समूह अध्यक्ष अजय बाङ्गाया बोना अर्थमन्त्री डाक्टर सोर्नी मुवागले निनु यङ्कया भ्रमणया नीति अमेरिका वासिङटन डिसी झायादिगुदु अर्थ मन्त्रालय कथा अर्थमन्त्री निगुदे दथि अगुवाली उपभोक्ता पुनर्निर्माण वित्तीय कार्यवाही कार्यदल FATF या ग्रे लिस्टसँग बिहान उनीगु नेपाया कुत भोटे कोशी खुसीबा लिपाया पुनस्थापना व पुनर्निर्माण व तव्यागु आर्थिक कथा भिङ्केगु विशेषण सल चुइगु धागुदु पृथ्वी राजमार्ग कथा धादिङ्गा गजुरी गाउँपालिका दुई लाइगु फुर्के खुसी ताँ चुइके धुङ्कानी यहाँगु वैकल्पिक सडक मिग निसे यहाँ घाउ बन्द जुगुदु जिल्ला प्रशासन कार्यालय कत परिवाटार पिपलटार आदम टार बेलिन टार मास्टार सडक खण्ड भिङ्के मागुली मिग सुथेसिया छित इलन निसे हिनेसिया सोता इतक फुक्क कथया सवारी जोल दिकागु धागुदु ये गङ्गबुई दुगु नु बस पार्के यात्रु सहायता कक्ष फलिस्थायागुदु ये उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय यातायात व्यवस्था विभाग ये महानगरपालिका यातायात व्यवसाय तथा मजदुर तेगु मङ्का गोस्या मिग नु बस पार्के यात्रु सहायता कक्ष फलिस्था जुगु ख अध्ययन नकाचका यातायात ध्याने तसे उपत्यका झिङ्यागु थासे यात्रु सहायता कक्ष फलिस्था जुगु ये उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख सुरेश प्रसाद काफ्रे जानकारी बियादिगु ख सन् 2026 थुके देन्यङ्क गुस च्यास व ने निमसिके स्क्रफ टाइफस संक्रमण लुया वगुदु थोले ने पेङ्गु जिल्ला बोलाना चङ्गुदु सल्याने आतक सोम मनुत सी धुङ्क गु इपिडी मियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा धागु ख लुए या त जिङ्के त छगुपुच सल्याने सल्यान्या दारमा वङ्गुदु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल लुम्बिनी विश्वविद्यालय विशिष्ट मसिका या त पलिस्ता या से बौद्ध दर्शन या त जिङ्के त इनाफिया नदिगुदु लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय मिग स्वे धुङ्का बौद्ध दर्शन या स्वैच्छिक ज्याजो आपाल जिङ्के त उज बिया दिलसा विश्वविद्यालय उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर माडिक रत्न स्वाक्य थिथि ज्याजो विशेष मन्त्री पोखरेल या त थ्वाथुका दिगुख इन्धन या ज्या थाउने इन्धन या भा थाउने धुङ्का अमेरिका युरोपेली दे त्यता उमिके दुगु डिजेल या धुकु च्याके त यागु इनाफ या त इयुन तपाईँको अस्वीकार यागु दु इरान वापिया हुने हलिनेङ्क डिजेल मो जुगुले अमेरिका थके दुगु धुकु जक छेले मफैको धासे थते इनाफ यागु ख अमेरिका हलिनेङ्क आपलान डिजेल निर्माण याइगु देख रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारत नापा आर्थिक कारोबार यायगु त धङ्गु भाता दुगु धैदिगुदु उकिया
नीति नु दिल्ली ना पा पार बहन व ढुवानी या त ल देखे त ल देखे त कुत या त ज्याजु या चंकु धैदी गु दुसा चीन व दक्षिण कोरिया या व्यावसायिक जहाज ना पान थे ज्याजु या त सहमति या धुंकु गुली भारत ना पान

के भयो के भयो रश्मि? के भयो तिमीलाई? अब त्यस भए हस्पिटल जानुपर्छ। म एम्बुलेन्सलाई फोन गर्छु। पक्का है? हेलो हेलो, एम्बुलेन्स हो?

आजु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिर रेढाङनी दा झेनमुलाक इन्दिरा थिङ भोटे कोसी थेन त्रिशुली घान्दिरी खाबा भालसे लागि गाछा हेन्से भन्दा मुबा गल्छी बेत्राओती सडक घ्यालाम दोषी सेङबा मुला होजा सडक घ्यालाम रि ट्र्याक ठोङबा गे जिनबा लिछा तिलमा हेन्से यातायात सेङबा खिन्ला गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेसी रसुवा घडी सडक योजनाला इन्जिनियर कृष्ण नाथ ओजासे यातायात सेङबा लिछा दोषी सडक सञ्जाल ग्याम गिक जोङ ग्याम आर्को जोङ थुइबा मुला बिसी सुङबा मुला चिन्थेन थुइबा ग्रेन छोङ नाका रसुवा गढी थुइबा चु ग्यालाम तसैला धुइरिन ठोङमा नाम्सा ला मिनी थेन छोङबोन कादेदा झ्याबा ताबा मुला भालसे क्षति शोभा लिछा रसुवा निबारी थेन रसुवा ग्याम खाबारी समस्या ताबा मुबा स्यार नोप राजमार्गला नवलपुरला विनय त्रिवेणी नि ला दाउनेरी तिनी स्योरी ब्रस दुर्घटना तामा मेन्दो डु मिनी सिबा मुला दुर्घटना रि मेन्दो चुइनी घाइते ताबा मुला नेपालगञ्ज ग्याम याम्बु खाबन लाबा बस नारारी पल्टी दिमा दुर्घटना ताबा हिन्ला बिसी जोङ प्रहरी घेजाङ नवलपुर से पाङबा मुला दुर्घटना ग्याम जजर कोटला बेरी गङ्गा नगरपालिका सोमला गाँचुई दिङला निर्जन गुरुङ बाँकेला कोहलपुर नगरपालिका सोमला सोमचुइनी दिङला दिपेन्द्र केसी बाजुराला स्वामी कार्तिका गाउँपालिका ला डुचुई गा दिङला नरेन्द्र राजगिरी बाँकेला कोहलपुर नगरपालिका चुइला घाँचुई गा दिङला एकेन्द्र राज रेग्मिथेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका निस्ला निचुइनी दिङला कृष कनै जिया थेन बाँके खजुरा गाउँपालिका निला सोमची डु दिङला सुरेश बिसिसी बामुला प्रहरी से पाङबा अन्सारी बस्री ड्राइभर लाछ्यामा मेन्दो चुई भ्रे मिनी क्रे बामुबा प्रतिनिधि सभाला सुङबोन डोलप्रसाद अर्यालसे ललितपुर छ्याम ह्युल नाङला बाई थेत्माला ग्योई कला रिमठिम तेन सम्पदा सोना लाबारी तोबा ठिम सोबारी बङ लाबा बिसी सुङबा मुला ज्यापु समाज एलासे तिनी ललितपुर रि सेङबा सोमची सोमचा तिदिङ ह्वाल्ला ठोङसेङ लासिबान सुङबोन अर्यालसे रिमठिम दा सोना लाबा गे दातेला भ्योन कादेला खिन्ला बिसी सुङबा मुबा नेपालला रिमठिम सम्पदा थेन लोलो लोलो युलबाङ थेन ग्लेठिम आन्दोलन डी भाइ थेत्माला रो कोङबा मुला सुङबान सुङबोन अर्यालसे दाखाबा पुस्तासे मौलिक रिमठिम थेन सम्पदा सोना लाबारी खामदोला बिसी सुङबा मुबा पूर्वाधार विकास ब्लोनखाङसे प्राङबोथेर लिछाङ ताबा मिनिला दिम तागाई बिसी सङ्घीय सरकार ग्याम तोङ घाँचुई थेन प्रदेश सरकार ग्याम तोङ निचुई घाँ लासी तोङ निश्चुई घाँ टाङ्गा अनुदान पिनबा लासी 2083 ला विधेयक सङ्घीय संसद लोनखाङरी धर्ता लाबा मुला दिमखाङ एन 2055 दा संशोधन लाबारी शोभा विधेयकरी मोकोन मिनी थेन थेला दिम थेमेदा दिम तगाई बिसी लोलो लोलो व्यवस्थाला प्रस्ताव लाबा मुला बिसी ब्लोनखाङ से पाङबा मुला गिक्छा रेम दिम शोभा नेपाली मिनिदा सरकार से तोक लाबा डिजाइन थेन मापदण्ड अनुसार दिम शोभारी तोबा गान्धी ग्याम तेबा थेन सिङ कादे टाङ्गा आकिन्ना पिनबा व्यवस्था प्रस्ताव लाबा मुला सङ्घीय संसदला दातेला ग्रेन ह्वाल थुम्बा मुला नेपाल ला युल्टिमला धारा कुचुई सोमला नि अनुसार ब्लोन सेङ छाङला सिफारिस रि युल चो रामचन्द्र पौडेलसे ग्रेन ह्वाल तिलमा मुना हेन्से थुम्ना लासिउबा हिन्ला प्रतिनिधि सभाला ग्रेन ह्वाल डी डुचुई नि रारी डुचुई भ्रे चिसाङ चिबा मुबा चु नोर्दिङ रि ग्रेन ह्वाल्ला सदनला निनोन सदन ग्याम गोर निचुई नि विधेयक पारित रेन चुई गिक प्रमाणीकरण ताबा मुला सनम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरी से राङला नै ह्युल्ला सिङ उत्पादन थेन उपयोग लेना लासी स्यान्दो ह्युल ग्याम बाबा सिङ दा काबारी सरकार चे घे योजना सोबान मुला बिसी सुङबा मुला कपिल बस्तुला तिलौरा कोट साझेदारी रि च्यास्युबान ब्लोन चौधरी से नेपालला रिरी सिङ नाइबा तसाई स्यान्दो ह्युल ग्याम सिङ बाबा घेदा काबा ठिम सोबान मुला बिसी सुङबा मुला ब्लोन चौधरी से रिला दिगो व्यवस्थापन पञ्चामा राङलान ह्युल्ला सिङला उत्पादन लेना लाबारी सरकार से भङ लाबान मुला बिसी सुङबा मुला
नेपाल री स्क्रफ टाइफाइस ला संक्रमण लेबा निबामुला सन् 2026 ला जनवरी हेन्से दाते धोना युलन नाङरी तोङकु ग्यार्जा ब्रेसे मेन्दो निसुई निरी स्क्रफ टाइफाइस संक्रमण पुष्टि ताबामुला स्क्रफ टाइफस ग्याम गोर निसुई ब्ली जोङरी लेची झिन बामुला इपिडिमियोलोजी थेन न्याम नियन्त्रण महाशाखा अनुसार हुम्ला मुगु थेन डोलपारी बिसाम दाते धोना संक्रमण मराङबा आरे चु लागी गन्हाङरी तोङनी ग्याजा निसे मेन्दो चुई भ्रेरी स्क्रफ टाइफस ला संक्रमण ताबा मिनी स्यापामुला सल्यान्डी लागिग्री मेन्दो सो मिनी सिबा लिछा इपिडिमियोलोजी थेन याम नियन्त्रण महाशाखा ला टोली दाते सल्यान ला धर्मा धोबा मुला चुराङलासिन जापानिज इन्सेफलाइटिस जेई ग्याम दाते धोना ग्यार्जा गिक्से मेन्दो सोमचुई घिक्री संक्रमण मराङबा मुला जापानिज इन्सेफलाइटिस ग्याम दाते धोना मेन्दो निचुई ब्रे मिनी सिबा मुला बिसी परिवार कल्याण महाशाखा से पाङबा मुला दाते धोना गोर सोमचुई निस जोङरी कुचुई स्थानीय तहरी जेईला संक्रमण मराङसी झिन्बा मुला मोरङला लेटाङ नगरपालिका कु जाँते ग्याम पथरी क्यार निभा सडक ग्यालाम्री तिलमा मुना मोटरसाइकल दुर्घटना तामा मेन्दो नि मिनी सिबा मुला बिसामा मेन्दो गी घाइते ताबा मुला इलाका प्रहरी गेजाङ लेटाङ सेपाङबा अनुसार मोटरसाइकल रि क्रेबा मेन्दो सोमरी मेन्दो नि मिनी सिबा हिन्ला दुर्घटना रि घाइते ताबा मोटरसाइकल सेङबा झापाला केराबारी चिबा निचुई निस्दिङला कुमार नेपाली थिएन मोरङला पथरी शनि चेरे चिबा निचुई घा दिङला सन्देश नेपालीला मन लवन लमा सिबा हिनला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ से पाङबा मुला स्यान्दो युल्डी गे लाबारी पुइसी पिन्ना विवन टाङ्गा ठगी लाबा अभियोगरी भक्तपुर चाँगु नारायण नगरपालिका सोम चिबा सोमची निस्दिङला सरोज मल्लदा प्रहरी से चुङबा मुला सरोज से साइप्राइस पुइसी पिन्ना विवन मेन्दो गिक मिनी ग्याम ला कु तोङ घाँचुई टाङ्गा किन्सी सम्पर्करी आखाबा लिछा पीडित से पिन्बा उजुरी ग्याम याम्बु उपत्यका अपराध अनुसन्धान गेजाङ टेकु ग्याम निबा प्रहरी से फेदा भक्तपुर चाँगु नारायण नगरपालिका सोम ग्याम चुङबा खिन्ला ग्रेन सानगिरु बोन हरी लम्साल तिनी निश्चुई ब्रे दिङरी ह्याम्स अस्पताल डी डोङस्यु बामुला सानगिरु बोन लम्साल फोक्सो ला मान लवन खास्यु बामुबा डोङबा लम्साल नेपाल पत्रकार महासङ्घ याम्बु शाखाला गाछाला चोहोमुबा थेला नि जा नि जामे थेन मृङ मुला नेपाल पत्रकार महासङ्घला गाछाला चोहो तारा नाथ दाहालसे सानगिरु बोन लम्साल डोङबासे रङदा लानन आच्याबा छोरबा मुला बिची सुङबा मुला काभ्रे जोङला पर्यटकीय ग्ला धुली खेल्दा युल नाङलान ग्रेन काङबा ग्ला सोबा लासी विकासला योजना गाछा बोरबान मुला धुलीखेल नगरपालिका चुई गिक्थेन चुई निला मुर चिसा पानी घाङ्री मोक्युल स्थान हकी रङ्गशाला थेन प्रशिक्षण केन्द्र सोबारी माइबा मुला रङ्गशाला सोबारी सरकार ग्याम बजेट थिएन नगरपालिका ग्याम सा पिन्बा लिछा सोबा गे तिबा सहमति ताबा हिन्ला सन् 2026 ला शारद ऋतुरी ग्लिङ गाङ क्रेबारी नेपाल छ्याम डुचुई कु युल्ला ग्यार्जा डुसे मेन्दो कुचुई नि मिनिसे अनुमति किन्बा मुला पर्यटन विभागसे पाङबा अनुसार चुधुरी गोर निचुई डु ग्लिङ गाङ क्रेबारी निश्चुई कु समहसे अनुमति किन्बा मुला विभागला शाखा अधिकृत सुधा रेग्मीसे सुङबा अनुसार चुपालसे मोकुन बिमा लाना मनास्लु धौलागिरी गिक्छा पुथा ग्लिङ दङ्गा थेन आमा दमलम हिङ ग्लिङगाङ क्रेबारी अनुमति किन्बा मुला डोटिरी सुन तोबारी निबा मेन्दो गिक जामे कोला थिएन मेन्दो गिक जा कोला दा स्योङसे भ्योङना लाबा मुला घटनारी जामे कोलाला सिबा लुइरो स्याप्पा मुला बिसाम जा कोला दाते दोना स्याप्पारी खाम्बा आरे आदर्श गाउँपालिका गा ताराला सोमची गिक दिङला लक्ष्मी ओजाला सिबा लुइरो तिनी स्योरी सायल स्योङला किनारारी च्याप्पा मुबा बिसी जोङ प्रहरी घेजाङ डोटिसे पाङबा मुला चुराङ लासिन पुवार्से झिमा घाइते तबा मकवानपुर
ला मेन्दोगिक झाकोला ला मन लामन लामा सिबामुला मोकवानपुरला हेटोडा उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर चुई निसुपुवाले दिमतासी दाते गोर्खा ला सहित लखन गाउँपालिका ओडा नम्बर डु घैरुङ री सडक ग्यालाम शोभा गे लाबन खाबा ब्रेचुई ब्रे ब्लिची ब्रे दिङला कुमार प्रजा सी बाहिनला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला स्यान्च्यु बन मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला।

0: more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: रेडियो नेपाल नया नेपाल को समावेशी आवाज राष्ट्रीय रेडियो राष्ट्र को संचार

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना दिल से।